0: सुप्रभात छत्रपति संभाजी नगर, फ्राइडे की यह सुनहरी सुबह है, आपके कानों तक लेकर आ गया हूँ मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान।
1: All is well, RJ Adnan, the morning show, freshness live radio ka flow,
0: on MGM 90.8 FM। सोचिए हफ्ते की थकान को पीछे छोड़ते हुए आज की सुबह कितनी प्यारी लग रही है ना। ऑफिस जाने का मन भी है थोड़ा हल्का, क्योंकि दिल के किसी कोने में वीकेंड की हल्की सी झलक दिखती है। कहीं कोई ना तो अपनी चाय के कप में शुक्रवार की खुशबू ढूंढ रहा है, तो कहीं कोई अपने काम की लिस्ट को देखते हुए गिन रहा है कि बस आज और फिर दो दिन आजादी। और सच कहूं तो फ्राइडे सुबह की वाइब अलग होती है यार, ना सोमवार का टेंशन, ना मंगलवार की भाग दौड़, बस एक पॉजिटिव एनर्जी, एक फ्रेशनेस और वीकेंड की एक्साइटमेंट। तो दोस्तों उठ जाइए, मुस्कुराइए और फ्राइडे को बताइए कि तू कितना स्पेशल है, क्योंकि जो सुबह मुस्कान से शुरू होती है वो दिन अपने आप ही शानदार बन ही जाता है। सो फ्राइडे वाली मॉर्निंग को और भी एकदम ताजा बनाते हैं और इस अगले गाने के साथ आज की मॉर्निंग गुड करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान इन द शो।

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनी नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस N6 सिडको, छत्रपति।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।
1: कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण होती है, लेकिन वही साधारण लम्हे सबसे खास बन जाते हैं। एक बार एक बुजुर्ग अंकल पार्क में अकेले बैठे थे। रोज आते एक ही बेंच पर बैठते, आसमान देखते और हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर रहती। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, अंकल आप यहाँ रोज आते हो, अकेले बैठते हो, आपको बोर नहीं होता है? वो हंसे और बोल दिया, बेटा जब मैं जवान था ना तब पैसे कमाने की भाग दौड़ में लगा रहा, और जब रिटायर हुआ तो महसूस हुआ कि असली जिंदगी तो मैंने कभी जी ही नहीं। अभी बेंच मेरी ट्रेनिंग है, जिंदगी से प्यार करना सीख रहा हूँ। हर दिन सूरज उगता है, हर दिन पेड़ हिलते हैं, बच्चे हंसते हैं, और मैं बस देखता हूँ, महसूस करता हूँ। क्योंकि अब पता चला है जिंदगी रुककर जीने की चीज है, दौड़ने की नहीं। सोचिए हम भाग तो रहे लेकिन कभी ठहर कर देखा है क्या क्या छूट रहा है? आज अगर आपकी बाइक की चाबी नहीं मिली, बारिश में छाता टूट गया, ये ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, तो बस इतना सोचिए आज जिंदा तो हो, और जब तक सांस चल रही है तब तक जिंदगी से प्यार कीजिएगा। क्योंकि जिंदगी ये कोई परफेक्ट फिल्म नहीं है, बल्कि एक अनकट अनप्लान्ड मास्टरपीस है। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट, और आप सुन रहे हैं किस्सों का कारवा में आज की ये छोटी सी कहानी। आज किसी को कॉल कीजिएगा, मुस्कुराइएगा और दिल से कहिए, जिंदगी मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जस्ट जीते रहिए जिंदगी, लव यू जिंदगी। आरजे अदनान का ये किस्सों का कारवा आपको कैसा लगता है बताइए जरूर। DM कीजिए इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, और जिंदगी से प्यार करते रहिए और सुनते रहिए
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

लेट्स टॉक अबाउट हेल्दी लाइफ। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। सुबह का वक्त है, अब तक आपकी नींद पूरी हो चुकी होगी। और एक सवाल आपके दिमाग में होगा कि वॉकिंग के लिए चले जाए या जिम के लिए चले जाए, इन दोनों में से बेस्ट क्या होता है? तो सिंपल, इसमें डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से बताऊंगा। कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई फीस नहीं, हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट है। वेट लॉस प्लस हेल्दी लाइफ के लिए अच्छा है, स्ट्रेस कम करता है और मूड फ्रेश करता है। ये क्या है? वॉकिंग करना। ये एकदम इजी, फ्री एंड कंसिस्टेंसी से भी आप कर सकते हो। देखो, अगर आप शुरुआत करना चाहते हो, बहुत बिजी हो, जिम को अवॉइड करना चाहते हो, लेकिन रूटीन लाइफ में हेल्दी रहना चाहते हो, तो वॉकिंग इज बेस्ट। अब आते हैं जिम पर। जिम पावर, स्ट्रेंथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी टोनिंग और मसल बिल्डिंग के लिए बेस्ट है। फास्ट रिजल्ट चाहिए और डिसिप्लिन और रूटीन बनाना है तो जिम बेस्ट है। अगर गोल है बॉडी को पूरा बदलना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो जिम इज बेस्ट। देखो, फाइनल दोनों का मकसद एक ही है, हेल्दी और फिट रहना दोनों का मकसद है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप क्या चुनते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्टार्ट कब से करते हो, क्योंकि 1 किलोमीटर चलना या 0 किलोमीटर सोचने से हमेशा बेटर होता है। तो चलते रहो, फिट रहो और हिट रहो। स्टे ट्यून्ड।

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी, ऑल इज वेल। यू आर लिसनिंग ऑल इज सो मेंटल हेल्थ पर बात करने के लिए अपने साथ है डॉक्टर मानसी करसगांवकर मैम, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड एचओडी ऑफ साइकोलॉजी एमजीएम यूनिवर्सिटी। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। और एंजाइटी पर हम इस वीक बात कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है, सो मैम, एंजाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं और इससे हमने कैसे बचना चाहिए?
1: देखिए, कुछ कॉमन सिम्टम्स यहाँ पे है जो कॉन्स्टेंट वरी हम लोग करते हैं, जो नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली हम वरी कर रहे हैं। फिर हमको रेस्टलेसनेस फील होता है या इरिटेशन फील होता है या सोने में दिक्कत होती है या रेसिंग हार्ट बोलते हैं ना कि पाल्पिटेशन हो रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं और वो इतनी तेज़ हो जाती है कि हमको लगता है कि ये हार्ट अटैक तो नहीं है ऐसा, मतलब इतना ज़्यादा रेसिंग हार्ट होता है। फिर ब्रेथलेसनेस होता है और स्टमक में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो ये जो सिम्टम्स है, जो कॉग्निटिव सिम्टम्स है, जैसे अभी मैंने बोला पूरा कॉन्सेंट्रेशन, उसे फिर डिसीजन मेकिंग में दिक्कत होती है और फिर जो इमोशनल सिम्टम्स हैं और बिहेवियरल भी सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं एक साथ, इसीलिए हमको बहुत केयरफुल होना चाहिए। और अगर ये चीज़ें हमको डेली लाइफ में अफेक्ट कर रही हों तो हमको मेंटल हेल्थ का ध्यान जो रख रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं मेंटल हेल्थ में, उनकी हम लोगों ने एडवाइस तुरंत ले लेनी चाहिए। इसमें हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए इन चीज़ों को।
0: तो दोस्तों, ये सभी बात याद रखिएगा और मेंटल हेल्थ को टाटा बाय बाय कीजिएगा, खुश रहिएगा, बस इतना ही कहूंगा। और आपके भी मन में कुछ सवाल हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर।

की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

फरमाइश फरमाइश और फरमाइश आपकी फरमाइश सराखों पर आरजे अदनान आपके साथ इन द शो ऑन MGM 90.8 FM। और आज गाने की फरमाइश आई है अमित देशमुख की तरफ से।

वाह क्या बात है यार, किशोर कुमार जी की आवाज में अब बेहतरीन सा गाना प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, ये गाने की फरमाइश की है अमित जी ने। सो अमित भाई की फरमाइश पर ये गाना भी हम प्ले करेंगे। बाय द वे आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, क्योंकि अपने इस शो में आप सभी की फरमाइशें पूरी की जाती है। सो जल्दी करें और फिलहाल अमित भाई की फरमाइश पर ये अगला गाना हम एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

काका, ओ मामा, ओ भैया, ओ दीदी, आप ऐसे कह रहे हो? आपने अपने गाड़ियों पर है सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई है क्या? चेक कीजिए, नहीं लगाई ना, कब लगाओगे? समझते नहीं है यार। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM। है सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हर एक गाड़ियों को कंपलसरी हो चुका है। 2019 के 1 अप्रैल से ये शुरू हो गया था, तो अब तक लगा था कि हर कोई अपने गाड़ियों पर ये नंबर प्लेट लगा देगा, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास बहुत टाइम है या तो बहुत बिजी है, लेकिन उन्होंने भी अब तक अपनी गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं लगाई है। तो आप प्रशासन एकदम स्टिक मोड पर आ चुका है। इसके पहले भी आया था, उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो सोच रहे थे कि लोग हैं, इंसान है, थोड़ा लेट हो जाते, लगा देंगे। बट अब तक बहुत सारे लोगों ने नंबर प्लेट नहीं लगाई है, तो आखिरी आपको वक्त दिया है 1 महीने का। 30 जून के पहले आप अपनी गाड़ियों पर ये नंबर प्लेट लगा दीजिएगा। फिर 1 जुलाई से जिस गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं रहेगा, उस गाड़ी पर कार्रवाई होगी और आपको फाइन भरना पड़ेगा। फिर मत कहना कि यार मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ है बोलकर, पता चल गया ना, तो ये लगाइएगा। इस नंबर प्लेट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करें ये भी बताऊंगा मैं आपको लेकिन कुछ ही देर के बाद। तब तक के लिए आने वाला गाना एंजॉय कीजिए और मुस्कान की जमकान के साथ सुनते रहिए। All is-

0: महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च तर्फे करिअर गायडन्स प्रोग्राम इन लॉ. लॉ फील्ड मध्ये करिअर करायचंय मग जाणून घ्या. लॉ एंट्रन्स एक्झाम, हायर एज्युकेशन ऍडव्होकेसी, कॉर्पोरेट लॉ, ज्युडिशरी आणि करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज, तज्ञ आणि प्राध्यापकांशी थेट संवाद साधण्याची सुवर्ण संधी. शुक्रवार 29 मे 2026 2:00 PM आइन्स्टाईन हॉल, छत्रपती संभाजीनगर. फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल ऑन 9371174124.
1: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा.
2: डॉक्टर अमोल पाचीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ.
1: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान. समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या.
2: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, एचपी पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर. अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर. कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688.
3: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं?
4: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर.
3: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है. इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है. सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है.
4: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
3: MGM University, Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784.

0: तो हम बात कर रहे थे आज
1: है सिक्योरिटी नंबर प्लेट की, आपने लगाई है क्या? नहीं लगाई ना, तो लगाना पड़ेगी आपको। हेलो, मैं हूँ आरजी अदनान और आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM। एंड है सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 30 जून का आखिरी टाइम आपके पास है, आखिरी डेट है। 30 जून के पहले आप अपनी गाड़ियों पर ये नंबर प्लेट लगा सकते हो। फिर 1 जुलाई के बाद अगर जिस गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं रहेगी उस पर कार्रवाई होगी। तो नंबर प्लेट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। HSRP ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए, यहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको एक डेट दी जाएगी। उस डेट के हिसाब से आप उस सेंटर पर जाकर नंबर प्लेट चेंज कर सकते हो। और हाँ, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो आपको एक पावती मिलेगी, वो साथ में रखिएगा। तो इतनी सिंपल प्रोसेस है और उसके बाद अपनी गाड़ियों पर नंबर प्लेट लगा दीजिए। फिर मत कहना कि यार मैं तो भूल ही गया। भूल जाओगे तो बड़ा पछताओगे, फाइन भी भरना पड़ेगा, समझे? स्टे ट्यून्ड।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन Open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

0: future researchers and innovators.
1: MG Mineral City is now inviting application for PhD admissions 2026 and 2027. तसेच LLB नंतर करा LLM. Constitution, Criminal आणि Intellectual Property Rights मध्ये 2 वर्षे तर Business मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम.
0: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
1: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgumu.ac.in/phd or call on 906-7612-000.
2: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा.
3: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ.
2: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान. समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध. आजच भेट द्या
3: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, एचपी पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउन्सिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर. कॉन्टॅक्ट ऑन 8889 2688.
4: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं?
5: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर.
6: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है. इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है. सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है.
5: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
6: MGM University, Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब direct industry and job ready बनना. Visit mgmu.ac.in or call 9230-877-84.

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: डिनर का मूड हो या फॅमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.

नमस्कार आदाब, आरजे अदनान आपके साथ है और गानों के किस्सों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और ये गाना हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक राग अहिर भैरव पर बना हुआ है। म्यूजिकल थेरेपी होती है ना, तो उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन को छू मंतर करने के लिए इस राग का यूज किया जाता है। ये राग को ना मॉर्निंग राग ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसे मॉर्निंग के वक्त ही गाया जाता है, सुबह 8 से 10 बजे के दरमियान। अहिर मतलब गाय भैंस चराने वाला, और ये राग भी गाय के गले में जो घंटियां होती ना, तो उससे डेवलप हुआ है ऐसा भी कहा जाता है। इस राग को मॉर्निंग के वक्त में सुनने के बाद दिन भर आपका मन एकदम स्ट्रेस फ्री होता है और सुकून भरा दिन आपका गुजरता है। और अपनी इंडस्ट्री में इस राग पर बहुत सारे गाने बने हैं, जैसे कि तो चलिए फिर इसी राग पर बनाया हुआ ये गाना अलबेला सजन आयो रे, ये अभी हम सुनते हैं। स्टे ट्यून।

लाल, साइबर क्राइम बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे और अपने शहर में भी ना तो अच्छे खास लोग इसके शिकार होते हुए नजर आ रहे और अपना अकाउंट पूरा खाली हो रहा है लोगों का। आरजे अदनान आपके साथ हिंदो शो। आता साइबर क्राइम पासून कसं आपण आपली काळजी घेऊ शकतो तर काय करायचंय, अननोन कॉल बिलकुल रिसीव नाही करायचा। स्पेशली व्हिडिओ कॉल जर आला अननोन नंबर वरून तर ते उचलायचा नाही म्हणजे नाहीच। और अगर कोई ना तो आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर, यूपीआई ऐप का नंबर या फिर पासवर्ड, ओटीपी, पिन मांग रहा हो ना तो उसको कहना कि भाई चल निकल यहाँ से, ऐसा कह दो। क्योंकि बैंक कभी भी ना तो आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड फोन के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं पूछता है। और व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, यूट्यूब ऐसे जगहों से ना तो आपको कुछ ना कुछ लिंक्स और फॉर्म और एप्स आते हैं आपके मोबाइल पर डाउनलोड करने के लिए, तो एपीके फाइल पर बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिएगा जो व्हाट्सएप पर आती है, क्योंकि वो भी ना तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह यूज कर रहे हो ना तो जो भरोसे वाला ऐप है वही यूज कीजिएगा। कोई भी ऐप यूज मत कीजिएगा जिसके ऊपर आपको अच्छे खासे ऑफर मिल रहे हैं ना, तो ऐसे ऐप तो बिल्कुल मत यूज कीजिएगा। और अगर आपको कोई फ्रॉडर कॉल कर रहा है और आपको शक है कि यार ये फ्रॉड है, तो आप इसकी कंप्लेन 1930 इस साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हो। ये नंबर बहुत जरूरी है, याद रखिएगा 1930। अगर किसी के साथ या आपके साथ भी साइबर फ्रॉड हो रहा हो या तो फिर आपको लग रहा हो कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है, तो 1930 पर कॉल करके आप साइबर क्राइम में हेल्प मांग सकते हो। तो इतनी चीजें याद रखिएगा, साइबर क्राइम से बचिएगा, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए।

0: महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च तर्फे करिअर गायडन्स प्रोग्राम इन लॉ फील्ड मध्ये करिअर करायचंय, मग जाणून घ्या लॉ एंट्रन्स एक्झाम, हायर एज्युकेशन ऍडव्होकेसी, कॉर्पोरेट लॉ, ज्युडिशरी आणि करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज। तज्ञ आणि प्राध्यापकांशी थेट संवाद साधण्याची सुवर्ण संधी। शुक्रवार 29 मे 2026 2:00 PM आइन्स्टाईन हॉल, छत्रपती संभाजीनगर। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल ऑन 9371174124।
1: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
2: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
1: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
2: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, एचपी पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर। अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
3: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं?
4: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं, पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
3: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
4: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
3: MGM University, Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घर गणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: डिनर का मूड हो या फॅमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफ टॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.

0: हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया।
1: All is well. RJ and the Nanaka morning show. Freshness like radio ka flow.
0: On MGM 90.8 FM. आरजी अदनान आपके साथ है ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि आरजी अदनान आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है, मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। डीएम कीजिए का इंस्टा पर आरजी अदनान इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: researchers and innovators.
1: MT Mineral City is now inviting application for PhD admissions 2026 and 2027. तसेच LLB नंतर करा LLM. Constitution, Criminal आणि Intellectual Property Rights मध्ये 2 वर्षे तर Business मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम.
0: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
1: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.
2: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं?
3: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर.
4: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है. इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है. सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है.
3: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
4: MGM University, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94 Native FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94 Native FM, साथ है तो बात।

0: महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च तर्फे करिअर गायडन्स प्रोग्राम इन लॉ. लॉ फील्ड मध्ये करिअर करायचंय, मग जाणून घ्या. लॉ एंट्रन्स एक्झाम, हायर एज्युकेशन ऍडव्होकेसी, कॉर्पोरेट लॉ, ज्युडिशरी आणि करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज, तज्ञ आणि प्राध्यापकांशी थेट संवाद साधण्याची सुवर्ण संधी. शुक्रवार 29 मे 2026 2:00 PM आइन्स्टाईन हॉल, छत्रपती संभाजीनगर. फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल ऑन 9371174124.
1: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं?
2: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर.
1: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है. इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है. सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है.
2: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
1: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब direct industry and job ready बनना. Visit mgmu.ac.in or call 9230877 84.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

सुन रहे हैं आपका मन पसंदीदा शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, जहाँ हर शाम बन जाती है थोड़ी सी खास, थोड़ी सी सुरीली और बहुत सारी यादों से भरी। दिन भर की भागदौड़, काम का तनाव और जिंदगी की उलझनों के बाद अब वक्त है खुद के लिए दो पल चुराने का। तो चाय की प्याली हाथ में लीजिए, दिल को थोड़ा आराम दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम लेकर आए हैं ऐसे गीत जो सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि सीधे दिल तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों, संगीत वो जादू है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। कभी पुराने दिनों की याद दिलाता है, कभी किसी खास इंसान की मुस्कान याद दिलाता है, और कभी बस यूं ही चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आता है। आज की इस खूबसूरत शाम में हम बात करेंगे प्यार की, दोस्ती की, यादों की और उन अनकहे एहसासों की जो हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं छुपे होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर गाना सिर्फ गाना नहीं एहसास होता है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, एंड ऑफ कोर्स हम सुन रहे हैं दिल से ओनली ऑन एमजी 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत फीलिंग किसी बड़ी पार्टी या महंगी जगह में नहीं, बस एक लंबी ड्राइव में छुपी होती है। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 FM। तेज धूप हो, सड़क लंबी हो, कार की खिड़कियों से आती हवा हो और साथ में आपका मन पसंदीदा म्यूजिक, बस फिर क्या चाहिए। कभी अकेले सफर का मजा अलग होता है, जहां इंसान खुद से बात करता है, तो कभी दोस्तों के साथ वही सफर हंसी और यादों से भरा बन जाता है। धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन रोड ट्रिप का अपना अलग ही सुरूर होता है। सड़कें जैसे नई कहानियां सुनाती है, हर मोड़ पर कोई नई याद बन जाती है और चलते चलते दिल भी थोड़ा हल्का हो जाता है। दोस्तों, जिंदगी भी एक सफर की तरह है। कभी रास्ते आसान मिलते हैं, कभी ट्रैफिक और मुश्किलें भी आती है, लेकिन अगर साथ अच्छा हो और दिल में संगीत हो तो हर सफर खूबसूरत लगने लगता है। तो अगर आज आप भी ड्राइव पर हो या बस खिड़की के बाहर इस मौसम को देख रहे हो, तो इस पल को महसूस कीजिए, क्योंकि जिंदगी की असली खूबसूरती इसी में होती है। दिस इज आरजे मनीषा एंड ऑफ कोर्स यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, जहाँ बातें होती है दिल की, सपनों की और जिंदगी को बेहतर बनाने वाले छोटे छोटे जज्बों की। दोस्तों, जिंदगी में कई बार कुछ चीजें हमें बहुत मुश्किल लगती है। नई शुरुआत करना मुश्किल, हार के बाद फिर से उठना मुश्किल और अपने डर का सामना करना तो सबसे मुश्किल। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जिस चीज को आप जीत लेते हैं वही चीज बाद में आसान लगने लगती है। सोचिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाई होगी कितना डर लगा होगा, पहली नौकरी का पहला दिन, पहली बार स्टेज पर बोलना या जिंदगी का कोई बड़ा फैसला लेना, उस वक्त सब कितना कठिन लगता था ना। लेकिन जैसे जैसे आपने हिम्मत की, कोशिश की और खुद पर भरोसा रखा, वही मुश्किल चीजें धीरे धीरे आसान बनती गई। दोस्तों, असली जीत सिर्फ मंजिल पाने में नहीं होती, बल्कि उस डर को हराने में होती है जो हमें शुरुआत करने से रोकता है। तो अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई चुनौती है, कोई सपना है जो मुश्किल लगता है, तो बस एक कदम उठाइए, क्योंकि शुरुआत में हर रास्ता कठिन लगता है, लेकिन एक बार आप उसे जीत ले फिर वही रास्ता आपकी ताकत बन जाता है। आप सुन रहे हैं दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।
1: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
2: एमजीएम यूनिवर्सिटी इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एडमिशंस 2026 एंड 27, तसेच एलएलबी नंतर करा एलएलएम, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
1: इफ यू आर रेडी टू टेक your academic journey to the next level, this is your opportunity.
2: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 906761200.
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन, व्यसन मुक्ती, पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, एचपी पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउन्सिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8889 2688।
5: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं?
6: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं, पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
7: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
6: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
7: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: डिनर का मूड हो या फॅमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.

दोस्तों, कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और जब बात हो प्यार, यादों और दिल के एहसासों की, तो कुछ गीत सीधे दिल में उतर जाते हैं। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। ऐसा ही एक गाना है। इस गाने की खास बात सिर्फ उसकी धुन नहीं, बल्कि इसकी वो एहसास है जो हर सुनने वाले को कहीं ना कहीं खुद से जोड़ देते हैं। कभी किसी की याद इतनी गहरी हो जाती है कि इसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसकी मौजूदगी हर पल दिल और दिमाग में रहती है। और शायद इसी एहसास को बहुत खूबसूरती से बयां करता है ये गीत, तेरा सुरूर। सिर्फ एक रोमांटिक गाना नहीं

0: ये उस फीलिंग का नाम है जब किसी का प्यार आपकी आदत बन जाता है, जब किसी की याद बिना बुलाए हर वक्त साथ रहे और जब दिल हर धड़कन में सिर्फ उसी का नाम महसूस करे। दोस्तों, संगीत की यही खूबसूरती होती है। कुछ गाने हमें हमारी कहानी याद दिलाता है, कुछ चेहरे याद आ जाते हैं और कुछ पल फिर से दिल के करीब आ जाते हैं। तो अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी खास याद हो, कोई खास इंसान है, तो इस गाने के जरिए उन्हें जरूर याद कीजिए और ऑफ कोर्स सुनते रहिए एमजीएम 90.8 एफएम साथ है तो बात है।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.
3: Admission open. MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, जहाँ बातें होती है दिल की, सपनों की और जिंदगी को नई सोच देने वाले एहसासों की। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान थक जाता है, मोटिवेशन कम हो जाता है, सपने दूर लगने लगते हैं और खुद पर भरोसा भी थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। ऐसे समय में कभी एक छोटी सी बात, एक अच्छा गाना, एक प्रेरणादायक मतलब इंस्पायरिंग फिल्म हमारी सोच बदल देती है, क्योंकि फिल्म में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, कई कहानियां हमें हिम्मत देना सिखाती है। कुछ किरदार बताते हैं कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो जीत जरूर मिलती है। जब हम किसी इंसान को स्क्रीन पर गिरकर फिर उठते हुए देखते हैं, अपने सपनों के लिए लड़ते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनी जिंदगी के लिए कई ताकत मिल जाती है। दोस्तों, प्रेरणा हमेशा बड़ी बड़ी किताबें भाषणों में नहीं मिलती, कभी कभी एक अच्छी फिल्म भी दिल और दिमाग को नई ऊर्जा दे जाती है। वो हमें याद दिलाती है कि हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। तो अगर आप भी इन दिनों थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आज खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालिए, एक ऐसी फिल्म देखिए जो आपको फिर से सपने देखने के लिए हिम्मत दे देंगी, जो आपको याद दिलाएगी कि आप जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा मजबूत है। और ऑफ कोर्स सुनते रहिए एमजी मनाड़ी पॉइंट एफएम, साथ है तो बात है।

संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, कभी कभी एक गाना हमारी सोच बदल देता है। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजे 90.8 एफएम। एक गाना हमारा हौसला बढ़ा देता है और जिंदगी को देखने का नजरिया भी बदल देता है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा गीत जरूर होता है जिसे सुनते ही दिल को ताकत मिलती है। जब मन उदास हो, जब रास्ते मुश्किल लगे या जब खुद पर भरोसा थोड़ा कम होने लगे, तब वही एक प्रेरणादायक गाना हमें फिर से खड़ा होने की हिम्मत देता है। दोस्तों, शब्दों में बहुत ताकत होती है और जब उन शब्दों के साथ जुड़ जाए तो एक खूबसूरत धुन वो सीधे दिल तक पहुंच जाती है। कई बार किसी गाने की सिर्फ एक लाइन इंसान की सोच बदल देती है। वो याद दिलाती है कि हार के बाद भी उम्मीद बाकी है, मुश्किलों के बाद भी रास्ते खुले हैं और अगर हिम्मत ना छोड़ो तो मंजिल जरूर मिलती है। यही वजह है कि कुछ गाने सिर्फ कुछ मिनटों के लिए नहीं होते, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। मुश्किल वक्त में हमारा सहारा बनते हैं और अच्छे समय में हमारी खुशी को और खास बना देते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में अगर कभी आप थका हुआ महसूस करें तो अपने मन पसंदीदा या इंस्पायरिंग गाने को जरूर सुनिए और ऑफकोर्स बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन एमजे 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।

कभी कभी जिंदगी बहुत लंबी जरूर लगती है, लेकिन सच कहे तो कई बार पूरी जिंदगी सिर्फ कुछ खास पलों से बदल जाती है। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजी 90.8 FM। एक छोटी सी मुलाकात, एक सही फैसला, एक हिम्मत भरा कदम या किसी अपने का कहा हुआ एक प्यारा सा शब्द, कभी कभी ये छोटे पल हमारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। इसलिए कहते हैं पलों पर भरोसा रखिए, क्योंकि यही पल जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। हम अक्सर बड़ी खुशियों और बड़े मौकों का इंतजार करते हैं, लेकिन जिंदगी की असली खूबसूरती उन छोटे छोटे पलों में छुपी होती है, जिन्हें हम कई बार बिना महसूस किए गुजार देते हैं। कभी दोस्तों के साथ खुलकर हंसना, कभी परिवार के साथ चाय पीते हुए बातें करना, या अकेले सफर में अपने पसंदीदा गाने सुनना, यही पल बाद में हमारी सबसे खूबसूरत यादें बन जाती है। दोस्तों, जिंदगी हर दिन हमें नया मौका देती है। कौन सा पल कब आपकी सोच बदल दे, कौन सी मुलाकात कब आपकी जिंदगी बदल दे, ये कोई नहीं जानता। इसलिए हर पल को महसूस कीजिए, दिल से जिए और छोटी खुशियों को अहमियत दीजिए। और सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: नैराश्य, बेचैनी, जोपिची समस्या, भीती, चिड़चिड़ाता, मानसिक आजार, लपोईची नहीं, उपचार क्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ति तज्ञ।
3: सतत चिंता, अति विचार करने, भीति वाटने, धास्ति बसने, भास होने, घाबरने, संशय करने, शंका येणे, चिड़चिड़पणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्र चाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउन्सिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।
5: Attention future researchers and innovators.
6: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 2027. Tasech LLB nantar kara LLM, Constitution, Criminal and Intellectual Property Rights madhe 2 varshe, tar Business madhe 1 varshacha vishesh abhyaskram.
5: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
6: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घर गणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: डिनर का मूड हो या फॅमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बोना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.

0: खूबसूरत सफर की तरह आज की ये सुरीली शाम भी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजी 90.8 FM। लेकिन जाते जाते दिल यही कहता है कि ये मुलाकातें, ये बातें और ये प्यारे गीत हमेशा यूं ही बने रहे। आज हमने साथ बिताए कुछ खूबसूरत पल, कभी मुस्कुराए, कभी यादों में खोए और कभी संगीत के साथ दिल की बातों को महसूस किया। यही तो खासियत है इस सफर की। कुछ पल के लिए सही, लेकिन दिल को सुकून मिल जाता है। दोस्तों, जिंदगी हर दिन कई कहानियां लेकर आती है। कुछ दिन आसान होते हैं, कुछ थोड़े मुश्किल, लेकिन अगर दिल में उम्मीद हो और साथ में संगीत हो तो हर शाम खूबसूरत लगने लगती है। तो जहां भी रहिए, खुश रहिए, अपने लोगों के साथ वक्त बिताइए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर आज के शो ने आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाई हो या आपके दिल को कुछ पल को सुकून दिया हो तो हमारा साथ सफल रहा। फिलहाल मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, कल फिर मुलाकात होगी इन नई बातों के साथ, यही इसी शो में, इसी शाम में।
1: डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
3: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

ओ काका, ओ मामा, ओ भैया, ओ दीदी, आप ऐसे कह रहे हो, आपने अपने गाड़ियों पर है सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई है क्या? चेक कीजिए, नहीं लगाई ना, कब लगाओगे? समझते नहीं है यार। आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ MGM 90.8 FM। है सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हर एक गाड़ियों को कंपलसरी हो चुका है। 2019 के 1 अप्रैल से ये शुरू हो गया था, तो अब तक लगा था कि हर कोई अपने गाड़ियों पर ये नंबर प्लेट लगा देगा, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास बहुत टाइम है या तो बहुत बिजी है, लेकिन उन्होंने भी अब तक अपनी गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं लगाई है। तो आप, प्रशासन एकदम स्टिक मोड पर आ चुका है। इसके पहले भी आया था, उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो सोच रहे थे कि लोग हैं, इंसान है, थोड़ा लेट हो जाते, लगा देंगे। बट अब तक बहुत सारे लोगों ने नंबर प्लेट नहीं लगाई है, तो आखिरी आपको वक्त दिया है 1 महीने का। 30 जून के पहले आप अपनी गाड़ियों पर ये नंबर प्लेट लगा दीजिएगा। फिर 1 जुलाई से जिस गाड़ियों पर है सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं रहेगा, उस गाड़ी पर कार्रवाई होगी और आपको फाइन भरना पड़ेगा। फिर मत कहना कि यार मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ है बोलकर, पता चल गया ना, तो ये लगाइएगा। इस नंबर प्लेट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करें ये भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन कुछ ही देर के बाद। तब तक के लिए आने वाला गाना एंजॉय कीजिए और मुस्कान की जनकान के साथ सुनते रहिए।

0: तो हम बात कर रहे थे आज
1: है सिक्योरिटी नंबर प्लेट की, आपने लगाई है क्या? नहीं लगाई ना, तो लगाना पड़ेगी आपको।
0: हेलो, मैं हूँ आरजी अदनान और आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM। एंड है सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 30 जून का आखिरी टाइम आपके पास है, आखिरी डेट है। 30 जून के पहले आप अपनी गाड़ियों पर ये नंबर प्लेट लगा सकते हो। फिर 1 जुलाई के बाद अगर जिस गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं रहेगी उस पर कार्रवाई होगी। तो नंबर प्लेट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। HSRP ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए, यहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको एक डेट दी जाएगी, उस डेट के हिसाब से आप उस सेंटर पर जाकर नंबर प्लेट चेंज कर सकते हो। और हाँ, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो आपको एक पावती मिलेगी, वो साथ में रखिएगा। तो इतनी सिंपल प्रोसेस है और उसके बाद अपनी गाड़ियों पर नंबर प्लेट लगा दीजिए। फिर मत कहना कि यार मैं तो भूल ही गया, भूल जाओगे तो बड़ा पछताओगे, फाइन भी भरना पड़ेगा, समझे? स्टे ट्यून।

0: researchers and innovators.
1: MG University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. Tasech LLB nantar kara LLM Constitution, Criminal and Intellectual Property Rights madhe 2 varshi tar business madhe 1 varshacha vishesh abhyasakram.
0: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
1: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 906761200.
2: नैराश्य बेचैनी झोपेची समस्या भीती चिडचिड आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत उपचार घ्या समाधान शोधा
3: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ
2: सततची चिंता अतिविचार करणे भीती वाटणे धास्ती बसणे भास होणे घाबरणे संशय करणे शंका येणे चिडचिडपणा एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे मंत्रचाळेपणा व्यसनधीता लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे वैवाहिक समस्या या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध आजच भेट द्या
3: उत्कर्ष क्लिनिक हर्सुल टी पॉइंट एचपी पेट्रोल पंप शेजारी जळगाव रोड छत्रपती संभाजीनगर अंतर रुग्ण विभाग दिशा हॉस्पिटल समुपदेशन काउंसलिंग सेंटर संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ छत्रपती संभाजीनगर कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688
4: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं
5: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर
6: ऑटोमेशन के जमाने में एआई मशीन लर्निंग आईओटी तो जरूरी है उसके साथ साथ सेंसर्स कंट्रोल सिस्टम कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है सोच बदलो इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो अच्छा जॉब तो मिलना ही है
5: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
6: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering जहां पढ़ाई मतलब direct industry and job ready बनना visit mgmu.ac.in or call 9230877

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: डिनर का मूड हो या फॅमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.

0: अब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
4: MGM University इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन्स 2026 एंड 27। तसेच LLB नंतर करा LLM, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
3: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज युअर अपॉर्च्युनिटी।
4: लास्ट डेट टू अप्लाय 21st May 2026 एंड एंट्रन्स एक्झाम 23rd May 2026। अप्लाय नाउ, विजिट www.admissions.mgmu.ac.in/phd और कॉल ऑन 9067612000।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बा

0: शहबाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
4: MGM यूनिवर्सिटी इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशंस 2026 एंड 27। तसेच LLB नंतर करा LLM, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
3: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज युअर अपॉर्च्युनिटी।
4: लास्ट डेट टू अप्लाय 21st May 2026 एंड एंट्रन्स एक्झाम 23rd May 2026। अप्लाय नाउ, विजिट www.admissions.mgmu.ac.in/phd और कॉल ऑन 9067612000।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
0: साथ है